0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यार, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें

एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेल क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अगे दे समें वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप लोग सुन रहे हैं गीत युग के प्यार भरे नगर।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 1701. इस वक्त हमारे स्टूडियोज में दोस्तों ब्रिस्बेन टाइम 1:01 हो रहे हैं. स्वागत है उन सभी लोगों का जो आज रेडियो विस्पानी सुन रहे हैं. रेडियो विस्पानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज 17 मार्स रॉक्स ब्रिस्बेन से. आज आपके साथ सो Hope everyone's enjoying a beautiful weekend out there.

दोस्तों, आज बहुत सारे से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. About a lot of new listeners all the way from USA, Sydney and other places. हमारे पास आज वेडिंग अनाउंसमेंट भी आई है, तो इंतजार करते रहिएगा दोस्तों. सिर्फ रिस्पानी से हम आप तक पहुंचा सकते हैं आपकी शादी की सालगिरह, आपकी जन्मदिन, जो भी खुश खबरी आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, डेडिकेशन. आप हमें कॉल करें 3279-1701 पर, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS करें. जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आज आपके साथ सू अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ ही हमारा आपका. जिंदगी क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं. जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे वेस्ट मत करो बार बार. जो जी गया इसे प्यार से, वही जिंदगी का सुपरस्टार. हो रात तो सुबह का इंतजार करो, और वो पल भी आएगा दोस्तों जिसका इंतजार है आपको. बस रब पर भरोसा रखो, बस इतवार करो. अब फर्क क्या है दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है. और कोई दिल में रखने के लिए जी रहा है.

कहना चाहते हैं कि जिंदगी को हंस के जीना सीख लो, क्योंकि गम तो गम है, गम पीछे ही छूट जाएगा अपने आप ही, बस जीना ही सीख लो। हमेशा मुस्कुराते रहे। हैप्पी वीकेंड एवरीवन।

बात मेरा से गीत, इसीलिए मैंने कहा कि जिंदगी से प्यार करो दोस्तों, लव यू जिंदगी। बहुत प्यारा से गीत आपने सुना, और चलते हैं आगे बढ़ते हुए महेंद्रा कपूर आशा जी की आवाज का अगला गीत सुनते हैं। यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्पानी अयाम।

प्यारा संगीत दोस्तों, आपने सुना आशा भोसले महेंद्रा कपूर की आवाज में। आप सुन रहे रेडियो विस्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 14 मिनट हो गए हैं 1:00। आपके साथ सुए हैं शनिवार मस्ती म्यूजिक, साथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है वंस अगेन। और आज बहुत कुछ हमारे पास है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास आज वेडिंग अनाउंसमेंट भी आई है, और भी ऑल द वे फ्रॉम सिडनी से। और साथ साथ में बहुत से लोग जो नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं ओवरसीज से, सिडनी से, आप सभी का स्वागत है रेडियो विस्वानी आईएम पर। हम चलते हैं, आज बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि आई गॉट अ वेरी लॉन्ग लिस्ट या। तो चलते हैं, पहले एक और गीत सुनते हैं, एक और मेरी पसंद का गीत, उसके बाद हम लेकर आने वाले आप सभी की रिक्वेस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: And I'm Sue. आपको पता है, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वारी। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज में 22 मिनट हो गए हैं 2:00। यह है शनिवार, मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी आयाम। और हम चलते हैं अगला गीत। आज की हमारी पहली फरमाइश हम शुरुआत करते हैं। और पहली फरमाइश किसने किया है? सैक्रामेंटो से ललिता गौतम। और इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं आज के वेडिंग अनाउंसमेंट। तो देखिए किसकी आज खुशी का दिन है दोस्तों। और अगर आपके पास भी कुछ खुशियां बांटने को है रेडियो ब्रिसबेन के साथ, तो जरूर आप हमें कॉल करें 3279-1701 पर। डेडिकेशन हो, कुछ भी हो, या बर्थडे अनाउंसमेंट हो, और अगर आपके पास हमारे मोबाइल नंबर है, एसएमएस करें। तो चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर, जहां वे सुन रहे ललिता गौतम। आप सुनना चाहते हैं रातें लंबी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लेकर आ रहे हैं आज के बहुत खुशखबरी. और आज खुशखबरी हमारे पास है ऑल द वे फ्रॉम बैंकस्टाउन सिडनी से, जहां पर प्यारी सी अनिशा, उनकी शादी हो गई है. बहुत प्यारी है अनिशा, मैंने उसको मिला है. कॉन्ग्रेचुलेशन अनिशा. और अनिशा के साथ किसकी शादी हुई है आपको पता है? जी हाँ, रायन की शादी. अनिशा और रायन की शादी इस सप्ताह लास्ट वीकेंड पर हो गई है, बड़ी धूमधाम से, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बहुत से लोगों के बीच में, साथ साथ में जितने भी रिश्तेदार वहां पर है, जितने भी फैमिलीज फ्रॉम अब्रॉड, सभी जगह से आपको बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद भेज रहे हैं. खास करके मैसेज हमारे पास आई है आपके डैड सनी की ओर से, मॉम रमीसा की ओर से, सिस्टर अलिशा, सिस्टर आयशा, साथ साथ में ब्रदर इन लॉ जिब्रेल की ओर से, नेफ्यू मिकी की ओर से, शादी के आपको बहुत बहुत सारे से बधाई भेज रहे हैं. रायन और अनिशा, हम भी ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों फूलों की तरह महकते रहो हमेशा, आपकी जिंदगी का प्यार हमेशा बसेरा से ही भरा रहे, आपको जीवन भर का प्यार, हंसी और खूबसूरत की यादों की बहुत सारी सी शुभकामनाएं. शादी बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को. तो चलते हैं रायन और अनिशा, आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा गीत चलते हैं, सुनते हैं कौन सा गीत है.
2: तेरे माथे
1: हमारी तरफ से भी शादी की बहुत सारी सी बधाइयां, और रेडियो विजवानी टीम की ओर से विशिंग यू अ वेरी वेरी बेस्ट डे एंड

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्यारी सी अनिशा एंड रायन, जिनकी शादी लास्ट वीकेंड पर हो गई है बैंक्सटाउन सिडनी में, और वहां से प्यार और आशीर्वाद दुलार और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके डेड सनी मम रामिसा सिस्टा आयशा अलीशा सिस्टा, साथ साथ में ब्रदर इन लॉ जिब्रेल है और नेफ्यू मिकी की ओर से, साथ साथ में ऑक्सली राइस की रशीदा अली उनके परिवार की ओर से बहुत सारी से बधाइयां आपको मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रायन एंड अनिशा, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: चले दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा है कि आज बहुत दूर दूर से लोग, बहुत से लोग आज नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है रेडियो विस्वानी पर। जो लोग आज हमें पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, हम चलते हैं ऑल द वे जिलमिया में, जहां पर हैं टोनी और शमी, उनके परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे से उनके रिश्तेदार हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स जो यूएसए में हमें सुन रहे, सिडनी में सुन रहे हैं, उनकी बहन नजमून जो यूएसए में हमें सुन रही है, निशान इन अतरून, और साथ में मुनव्वर इन एडमंटन कनाडा, साथ में उनकी बहन जीनत वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं, और भाई मोहम्मद हुसैन इन सिडनी, और साथ में उनके नीज शरीन फ्रॉम एडमंटन कनाडा। आप सभी सुनना चाहते हैं अगला गीत लग जा गले।

मुझे लगता है शायद ये गीत कभी पूरा ना होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे से लोग नीली एवरी वीक हमारे पास इस गीत की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन आज बहुत से लोगों ने इस गीत में हमारे साथ शामिल हुए थे। वहाँ जिलमिया से शमी और टोनी, उनके परिवार जो शमी की बहन नजमून इज लिसिंग इन USA, उनके भाई निशान, और साथ में अतरून, साथ में मुनव्वर इन एडमेंटन कैनेडा, साथ में सिस्टर जीनत इज लिसिंग इन वैनकूवर कैनेडा, साथ में उनके छोटे भाई मोहम्मद हुसैन इन सिडनी, और सोनी शरीन एडमिंटन कनाडा। स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्पानी आईएम पर। रेडियो विस्पानी 24/7 आप सुन सकते हैं। अगर आपको मेरा साथ चाहिए, आई बी बैक अगेन टुमारो फ्रॉम 2:30 ऑन रेडियो विस्पानी आईएम, दिस ब्रिस्बेन टाइम।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: के साथ साथ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 2:15 बजने वाले हैं। 2:15 बज चुके हैं, जी हाँ 2:15 बज चुके हैं। और एक बार फिर शनिवार मस्ती म्यूजिक पर आपके साथ साथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक चलते हैं। देखें हमारे पास आज किसकी कॉल है। अगला फरमाइश है हमारे पास उलंगेबा से सविता की ओर से, साथ में निर्मला बेन और सपना, साथ साथ में उनकी बहन निर्मा लाल, जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। यहाँ हमारे ब्रिस्बेन की मेहमान है, जो उलंगेबा में हमें सुन रही हैं। और आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: शिकार
1: शिकार होके चले, व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर। और आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में पद पर धर्मेंद्र के लिए राइटर पुष्पानी पर इस गीत को फरमाइश किया आज निर्मा लाल फ्रॉम न्यूजीलैंड, जो यहाँ हमारे ब्रिस्बेन के मेहमान हैं। साथ में है सविता फ्रॉम मुलंगेबा, निर्मला बेन एंड सपना। आप सुन रहे हैं रेडियो पुष्पानी 1701 किलोहर्ट्ज पर। और अगले गीत की फरमाइश है, हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर। फरमाइश आई हमारे पास कामिनी नारायण की ओर से। कामिनी, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

बहुत प्यारे से गीत की फरमाइश आई थी हमारे पास कामिनी नारायण की ओर से फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। फॉरेस्ट लेक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, शामिल हो गई हमारे साथ फॉरेस्ट लेक से रोशनी शर्मा, आपके लिए अगला गीत, फिल्म का नाम ब्लैक माइल।

0: अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारा संगीत पल पल दिल के पास तुम रहते हो। फिल्म का नाम ब्लैक माइल, पर्दे पर राखी और धर्मेंद्र के लिए। अब रेडियो वाणी पर हमारे साथ शामिल है, ने हमारा प्रोग्राम सुन रही है रोशनी शर्मा फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असि 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असि होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: चलते हैं, अगला गीत जो है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से लिया हुआ गीत है, विनोद खन्ना और राखी गुलजार अमिताभ बच्चन की फिल्म। आप सभी को पता है मुकद्दर का सिकंदर, और इसकी फरमाइश आई हमारे पास सिडनी से रशीदा अली और साथ में रमीजा की ओर से। सुनते हैं आप दोनों की पसंद। प्यार जिंदगी है तो प्यार बंदगी है।
2: Music, eh? You like it?

ये घड़ी कहती है कि 5 मिनट हो गए हैं ब्रिस्बेन टाइम 2:00। ये है शनिवार मस्ती म्यूजिक। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर ले आती है दोस्तों, जहां हमारी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया अलग बदल जाता है। जो आज बहुत जरूरी लगता था, शायद आज उनकी कोई कीमत ना हो, और जो छोटी सी कल नजरअंदाज हम कर ही दी थे, तो आज वही सुकून बन जाता है। तो समय के साथ हालत नहीं बदलते, कभी कभी जिंदगी का अर्थ भी बदल जाता है। फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एका सिडनी से रजिन और मालती प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: का भवर करे पुकारी मिक्स पर आपने इस गीत को सुना और हमारे साथ शामिल हो गए थे रजीन और मालती प्रसाद, हमेशा की तरह जो हमें सुन रहे हैं ग्रीन एकर्स सिडनी में। और हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्रामेंटो यूएसए में विजयन हमें वहां सुन रहे हैं। तो विजयन जी चलते हैं, अब आपकी बारी है, सुनते हैं आपका गीत।
1: कुछ भी
2: Welcome to Kelo, sir.
3: Thank you.
2: My name is Rajan. You both are looking very smart, sir.
3: Thank you, Rajan. Dekha, literacy.
2: Try,
4: अरे भाई साहब आगे देखो,
5: अरे
4: अन्ना,
5: अरे
4: इधर क्या बोलते हैं,
5: अरे भाई को क्या बोलते हैं,
4: अरे आगे देखो।

0: और दोस्तों बहुत प्यारे से गीत, रोमांटिक सॉन्ग जिसकी फरमाइश करने वाले थे विजयन, जो हमें सुन रहे हैं वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: चलते हैं दोस्तों अगली गीत की ओर। हम पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे से रिक्वेस्ट यहाँ पर है और हमारा आपका साथ है। आज ठीक 3 बजे तक शनिवार मस्ती म्यूजिक है। शामिल हो गए हमारे साथ मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए।

और इस गीत को फरमाइश किया था मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रहे कैलिफोर्निया यूएसए में। द गैप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फरमाइश है हमारे पास द गैप से जहाँ हमें सुन रहे हैं ध्रुव और अरुणा। तो चलते हैं आप दोनों की फरमाइश पर, सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन से लिया गीत।

प्यार साथ है तो हमें क्या कमी है, लता जी की आवाज का गीत आपने सुना और इसे फरमाइश करने वाले थे ध्रुव पर अरुणा फ्रॉम द गैप। फरमाइश है हमारे पास कैड्रोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से, आप सुनना चाहते हैं अगला गीत।

0: इस को फरमाइश करने वाले थे, इस गीत को फरमाइश करने वाले हैं जोनी और सविता, जो हमें सुन रहे हैं केड्रोन पार्क में।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर। हम बढ़ते हैं, बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार करें, अमला सिंह फ्रॉम शिकागो। अमला, चलते हैं आपकी फरमाइश पर। पेश है अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

0: बहुत प्यारा सा गीत रफी साहब की आवाज का, और फरमाइश आई थी हमारे पास आमला सिंह की ओर से फ्रॉम शिकागो। बस दोस्तों हमारे स्टूडियोज में बहुत समय नहीं बचा है हमारा आपका साथ होने के लिए, लेकिन चलते हैं अब हम थोड़ी देर के लिए कुछ धमाका करते हैं।
1: डीजे स्पिरिट
2: चलो नाचो।
0: दोस्तों आप सुन रहे रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान है शनिवार मस्ती में।

दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि का त्योहार भी आने वाला है, तो हम आपके लिए बहुत सारे से गरबे ढूंढ कर लाएंगे ताकि आप इस गरबे का जो म्यूजिक है उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और गरबा में भी आप झूम सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी।

हाँ दोस्तों, समय की ओर देखा जाए तो अब हमारे स्टूडियोज में बहुत समय नहीं बचा है, बस 15 मिनट बचा है हमारा प्रोग्राम समाप्त होने में। शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी, आइए हम किसी का रिक्वेस्ट अब नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा है। और टुमारो कल एक बार फिर अगर आप रिक्वेस्ट मेरे साथ करना चाहते हैं तो 2:30 से हम आपके साथ हो जाएंगे। हम चलते हैं 8 माइल्स प्लेन्स की ओर। शामिल हो गए हमारे साथ अल्पना, अभी ही काम से आई है और कहती है कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। थैंक्स अल्पना, चलते हैं आपको भी शामिल करते हैं अगला गीत में।

0: है दोस्तों, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर फीडबैक के ऊपर फीडबैक है। पीपल आर रियली एंजॉयिंग द प्रोग्राम। तो चलते हैं आप सभी के लिए एक और आखिरी गीत हमारी तरफ से, एंजॉय।
1: डीजे फरीहा,
2: टर्न इट अप,
1: आज की रात

दोस्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं इस गीत में मेलबर्न से एल्फ्रेडो किरण प्रसाद और साथ साथ में वहां पर मटर सिडनी से रोबिना उषा।

इसके साथ साथ दोस्तों हमारा चलने का समय हुआ, जबकि 2 मिनट हो गए हैं 3:07 देने के लिए। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर फीडबैक। आई रियली अप्रिशिएट इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट्स। और चलते हैं, चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी अगली मुलाकात है टुमारो संडे वीकेंड पर 2:30 से ब्रिस्बेन टाइम। और याद रखिएगा, मेरे से पहले आपके साथ हो जाएंगे, सुबह में आपके साथ होंगे जतीश भाई और फिर फिरोज भाई और फिर रॉय सिंह, उसके बाद में मेरा प्रोग्राम, इसके बाद आपके साथ हो जाएंगे शशि चौखन 5 o'clock से। नमस्ते, खुदा हाफिज, इंजॉय वीकेंड, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

पर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज ना तो अलार्म की जिद थी और ना ही छुट्टी खत्म होने का खौफ। सैटरडे है दोस्त, थोड़ा सा रुकने का, सांस लेने का और खुद से कहने का, आज जल्दी किस बात की है। आज तो दिन भी अपना है, वक्त भी अपना है और ये शो भी अपना है। वैसे मैं हूँ इस आपके वीकेंड वाले शो में आपकी आरजे सताक्षी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ सैटरडे डिलाइट। तो बस अब कोई टारगेट्स की बातें नहीं होने वाली, आज होने वाली हैं बातें सिर्फ और सिर्फ सुकून की, अच्छी बातें और कमाल के गाने। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये वक्त और भी स्पेशल और खास हो जाएगा। तो चाय का कप उठाइए अपने हाथों में और करिए खुद को थोड़ा सा रिलैक्स। सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

हैं सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मंडे से फ्राइडे हम ऐसे भागते हैं जैसे ऑन टाइम डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय टाइमर देख रहा हो, और सैटरडे को तो बॉस टूथब्रश पकड़ने में भी 10 मिनट का ब्रेक लेने का मन करता है। और आलस तो वो मजे का आता है कि भाई ब्रश करने के बाद भी सोफे पर एकदम पड़ जाते हैं, अभी तो कुछ नहीं करना है, आज तो वक्त हमारा है, दिन हमारा है। तो बस हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है पूरे हफ्ते बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की है, तो अब रिलैक्स करना तो बनता है। तो रिलैक्स कीजिए और सताक्षी के साथ सुनिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: रेडियो प्रसारणी पर सैटरडे डिलाइट आपके वीकेंड वाले शो को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये वीकेंड वाले पल बहुत ही खास और स्पेशल है क्योंकि वीकेंड्स हमारे हिस्से रोज रोज तो आते नहीं है भाई साहब। सैटरडे लाने के लिए बाकी के दिन मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके छुट्टी नसीब होती है। तो इसी छुट्टी को, इसी वीकेंड को चलिए सेलिब्रेट करते हैं अगले ट्रैक के साथ। अभी मेरे साथ सुनते रहिए आपका अपना सैटरडे डिलाइट।

वीकेंड्स में और हमारे बचपन वाले वीकेंड्स में बड़ा फर्क होता था ना। तब ना तो हमारा इनबॉक्स भरता था और ना ही दिमाग में ओवर थिंकिंग्स चला करती थी। बस हम होते थे और हमारे वीकेंड्स होते थे। वक्त बदल गया पर सैटरडे की वो खुशबू आज भी वैसी की ही वैसी है। वैसे आपकी भी चाइल्डहुड मेमोरीज तो होंगी वीकेंड्स वाली, सबकी हैं भाई। किसी को टीवी के आगे बैठ जाना अच्छा लगता था तो कोई बस उठना नहीं चाहता था बिस्तर से, और मम्मी से कहते थे कि मम्मी आज तो लंच ब्रेकफास्ट सब यहीं पर दे दो, आज उठने का मूड नहीं है। या फिर हम जैसे शैतान बच्चे भी थे जो एक बार खेलने निकल जाते थे तो शाम तक घर पर ही नहीं दिखते थे। हाँ, और आपकी भी वीकेंड्स वाली ऐसी जरूर मेमोरीज होंगी जिन्हें आज आप बहुत मिस करते होंगे। आज आपके हाथ में फोन तो है, फोन की स्क्रीन पर आपकी आंखें भी इधर उधर दौड़ती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वक्त नहीं मिलता जो उस वक्त का सुकून भरा पल होता था, है ना। तो चलिए उन मेमोरीज को याद करते हुए एक अच्छा सा गाना प्ले करती हूँ आपके लिए। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रिस्वानी 107.01 FM पर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: आपके सैटरडेज को सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर। वीकेंड के ये खास पल हम और भी खास बनाते रहेंगे। एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं और इसके उस पार कुछ और बातें जहन में हैं जो इस वीकेंड आपके साथ बांटूंगी। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 107.01 FM।

मीडिया के लिए वक्त निकालते हैं, बॉस, काम, फैमिली, सोशल मीडिया, और उस इंसान का क्या जो अंदर बैठ के थक गया है। आज 15 मिनट बस अपने साथ बैठिए, कोई बुक पढ़िए, बालकनी में बैठिए, या बस शांत होकर अपने आप से बात कीजिए। यू नो, कभी कभी ना मी टाइम इंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। ये मी टाइम कोई लग्जरी नहीं है, हमारी और आपकी जरूरत है। ये जरूरत भी आपको बताऊं, वो पहले के जमाने में नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में एक पेड़ के नीचे सब छुट्टी के दिन बैठ जाया करते थे, मोहल्ले वाले हालचाल ले लिया करते थे। लेकिन आज के वक्त में हम अपार्टमेंट्स में बढ़ गए हैं, आज के वक्त में सोसाइटीज में हम लोगों को इतना वक्त नहीं है कि जाकर एक दूसरे से पूछें कि कैसे हो, क्या हाल है, आज वीकेंड पर क्या कर रहे हो। सब इतने थके हुए हैं कि बस अपनी थकान उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये मी टाइम बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खुद के साथ कुछ वक्त जरूर गुजारिए, कैसे वो आपकी मर्जी है। इंजॉय कीजिए अगले ट्रैक, और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yeah, Saturday delight. आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। ये पल है वीकेंड्स की जिनके साथ हम और आप कुछ हसीन पलों को जी रहे हैं। तो बस हमारा और आपका ये हमारा वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। कोई और आए तो नॉक करने दीजिए डोर को। डोर खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज आप छुट्टी पे हैं। फिर चाहे बॉस के लिए हो, रिलेटिव्स के लिए हो या फिर दोस्तों और यारों के लिए, दरवाजा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।
3: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट में आप सताक्षी के साथ हैं। वैसे आज जब हम और आप किसी से मिलते हैं तो उसको देखकर यही कहते हैं ना कि यार बड़े दिन बाद मिले, न जाने अब कब मिलना होगा। और भूले भटके अगर आप भी और वो बंदा भी किसी मैरिज में फिर से पहुंच गए तो आप टकरा जाते हैं साथ में। पर सच बात है, सोचने की बात है कि हम सब कितने बिजी हो गए हैं। और अगर कभी हमें खाली टाइम मिलता भी है तो दोस्तों को फोन करने से पहले सोचना पड़ता है, पता नहीं यार हम तो फ्री हैं, वो फ्री होगा कि नहीं। तो बस आज कुछ मत सोचिए, पुराने दोस्तों को फोन मिलाइए और बिना किसी काम के बस ये पूछ लीजिए, और बता कैसा है, क्या चल रहा है जिंदगी में। यू नो, कभी कभी शुरुआत रिश्तों की गहराइयों की खुद से करनी पड़ती है। और उसी गहराइयों के नाम ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Saturday Delight, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। You know, weekends के लिए हम इंतजार तो काफी करते हैं, लेकिन weekends आने पर अक्सर उन्हें यूं ही गुजर जाने देते हैं। कभी कामों का बहाना बनाकर, तो कभी बस यार टाइम नहीं मिला ये कहकर। इस बार अपने वीकेंड्स को ऐसे मत गुजरने दीजिए। आपके वीकेंड्स थोड़े बहुत ही सही, लेकिन आपके भी हैं, तो कुछ वक्त खुद के लिए निकालते चलिए। और सैटरडे डिलाइट तो है ही इस वीकेंड्स आपका साथ निभाने के लिए। एक अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रीजो ब्रिस्वानी 1701 AM।

जिंदगी में ना हर एक चीज का सॉल्यूशन तुरंत ढूंढना जरूरी नहीं होता है। कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आज सैटरडे को स्ट्रेस से कहिए, तुम्हारा नंबर मंडे को आएगा। आज मेरा टाइम है और आज मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। बाबा, टेंशन को मारिए गोली और एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये खूबसूरत ट्रैक फिलहाल अभी। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी 1701 AM, क्योंकि टेंशन का काम वीकेंड्स पर नहीं होता है। बाकी जो जैसा था वो वैसा मंडे को देखा जाएगा। एंजॉय कीजिए इसे एंड यस, बने रहिए मेरे साथ रेडियो प्रस्थानी पर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर आपके अपने वीकेंड वाले शो को सैटरडे डिलाइट. आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ. सैटरडे की खूबसूरती अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि हर एक पल ना बस जल्दी जल्दी बीतता चला जाता है. वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन जल्दी गुजर जाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वीकेंड्स भी जल्दी गुजर जाते हैं. और इसीलिए हम इन पलों को जल्दी जल्दी आपके लिए संजो रहे हैं, ताकि आपके अंदर जल्दी जल्दी वो वापस से एनर्जी दौड़ सके. एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ अभी, और यूं ही सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 107.0 वाले एम्पर.

सैटरडे डिलाइट आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। आपके वीकेंड्स में हमने कुछ बहुत सारी मस्ती घोल दी है क्योंकि हमें पता है कि जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो सिर्फ सुकून नहीं थोड़ी सी मस्ती की भी जरूरत होती है। और वैसे भी जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में मस्ती का क्या ही काम। बट सच तो ये है कि अगर मस्ती ना हो तो जिंदगी में कोई भी चीज नहीं बचती। जिंदगी में थोड़ी सी ही सही लेकिन पागलपंती तो जरूरी है। अपनी जिंदगी को थोड़ा रापचिक बनाने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए कभी मस्ती मजाक जरूरी है तो कभी लोगों को तंग करना जरूरी है। बस ये याद रखिए कि आपकी मस्ती किसी पर भारी ना पड़े। आपकी मस्ती आपके मूड को रिलैक्स करने के लिए होनी चाहिए, किसी का स्ट्रेस इंक्रीज करने के लिए नहीं। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रिस्वानी, सताक्षी है आपके साथ।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: साथ के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर. वीकेंड के ये खास पल हम और भी खास बनाते रहेंगे. एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं और इसके उस पार कुछ और बातें जहन में हैं जो इस वीकेंड आपके साथ बांटूंगी. फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM.

पराठे डे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आज खाने में क्या बनेगा? जी हाँ, और ये प्रॉब्लम जो है ये हर घर की होती है। जनरली हस्बैंड्स कहते हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, आज तो 56 भोग वाले आइटम्स आप सोच के बैठते हैं, लेकिन जो हमारी होम मेकर्स हैं, हमारी हाउसवाइफ्स हैं, या जो लेडीज आज उनका भी सैटरडे और संडे मनाने का मन है, वीकेंड्स उनके भी हैं, है ना, वो कहती है कि भाई मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों मेहनत करूं, मेरे भी तो वीकेंड्स हैं, मुझे नहीं बनाना कुछ, आज बाहर से कुछ ऑर्डर करा जाए, या फिर बाहर चलकर ही लंच और डिनर कर लेते हैं ना, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हर घर की प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बड़े बड़े प्लानिंग्स के बाद चलो अच्छा चल लेते हैं, या नहीं प्लीज कुछ बना लो, ये सब कुछ करने के बाद ना अल्टीमेटली आप घर का खाना ही खाते हैं। कई लोग तो बिल्कुल तैयार होकर निकलने वाले होते हैं, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि यार चलो आज कुछ घर पर ही बना लेते हैं। तो वो जो तहरी और खिचड़ी बनती है कई बार घरों में वीकेंड्स पर, या फिर सैंडविचेस बनाकर ही दोपहर का लंच हो जाता है, उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे? ये क्रेविंग्स जो हैं सैटरडे और संडे वाली, ये क्रेविंग्स धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि बाहर जाने में भी आलस आता है। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वीकेंड्स को खास बनाने के लिए भैया वीकेंड वाले लंच पे निकल जाते हैं, वीकेंड वाले डिनर पे निकल जाते हैं। अच्छा, रोमांटिक डिनर और कैंडल लाइट डिनर भी उनका वीकेंड पर हो जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं, सोशल मीडिया पिक्चर्स अपलोड करने के लिए। तो भाई अपने घर की बालकनी में भी अगर आप दोनों साथ में बैठकर या पूरी फैमिली साथ में बैठकर अपने लंच को, अपने डिनर को एंजॉय करेंगे, तो वो भी डिनर बहुत खूबसूरत होता है अगर उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर नहीं आपके दिलों में खींची जाए, है ना। आइए फिर एक और ट्रैक सुनिए इसी बात पर, और अपने मी टाइम को या अपने फैमिली टाइम को, अपने रोमांटिक टाइम को अपने लिए खास बनाइए, लोगों के लिए नहीं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट। एक और ट्रैक के साथ अभी लेकर चल रही हूँ आपको आगे।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: Saturday Delight आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपके अपने Radio Brisbane 1701 AM पर. इस Saturday हम अपने साथ साथ आपके भी वीकेंड्स को खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, मेरे वीकेंड्स तो तब खास हो जाते हैं जब आपका साथ मेरे साथ होता है ना. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, नहीं, मेरे साथ में तेरा साथ हो. लेकिन आपके वीकेंड्स को और स्पेशल बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है. वैसे हमारे और आपके वीकेंड्स कैसे भी हों, वीकेंड्स तभी स्पेशल हो जाते हैं जब बॉस फोन ना करे, बॉस का कोई कॉल ना आए. अच्छा, ये वीकेंड्स जो हमारे होते हैं, यानी सैटरडे और संडे वाला वक्त या फिर त्योहारों वाला वक्त जब होता है, तो जनरली जो है हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं, क्योंकि हमें बॉस को छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं देनी कि भाई हम नहीं आ पाएंगे और वो फिर हमें 100 नखरे दिखाएगा. भाई फ्राइडे इवनिंग को आप शान से निकलते हैं ऑफिस से बाहर, हाँ छुट्टी तो हमारी है, तुम दो या ना दो, है ना. हाँ, तो वो फीलिंग भी बड़ी अजीब और बड़ी मस्त होती है यार. मुझे लगता है सैटरडे संडे तो छोड़ दीजिए, फ्राइडे इवनिंग को आधी थकान आपकी उतर चुकी होती है. बिकॉज किसी से छुट्टी मांगनी नहीं है, हक है हमारा और हम लेकर रहेंगे. उसी छुट्टी के नाम ये अगला ट्रैक है. स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिसवानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट. आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे गाने इस वीकेंड सताक्षी के साथ.

दोस्तों ये था सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी का एक और प्यारा सा साथ आज आपके साथ। और अब इस वीकेंड अपने बोरिया बिस्तरा को यहाँ से समेटने का हो गया है मेरा वक्त, क्योंकि अगला शो कर रहा है आपका इंतजार और मुझे लेनी होगी अब आज इस सफर से आपसे विदा। तो ख्याल रखिए खुद का, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को सेलिब्रेट करते रहिए और जीते रहिए। मैं मिलती हूँ कल एक बार फिर से। हैव अ ग्रेट वीकेंड, नमस्कार।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीट्स।

लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम जोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: अरे बोलना, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
4: जैसे क्या?

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818। फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: मैं निकला

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Farmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ
0: बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: तुम जीत गए, हम जीत गए।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: किरण, आई लव यू, आई लव यू किरण।
4: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: उमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

शिव चरणों को छूने से तन मन पावन होए, शिव के रूप अनूप की करुणा करे न कोई। जी हाँ, शिव का रूप अनूप है और सिर्फ उसे छूने से ही आप निर्मल और पावन हो जाते हैं। तो आज फिर से न सिर्फ शिव के इस रूप को लेकर साथ में, बल्कि अनगिनत कहानियाँ, कथाएँ और जो बातें हमें पता हैं प्रभु के बारे में, उन सब के साथ इस भक्ति सागर में गोते लगाने के लिए मैं सताक्षी आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए भक्ति सागर को लेकर। ये वो सागर है जहाँ भक्ति का रस इतना मीठा है कि दिल करता है कि बस इसी भक्ति रस में डूबे रहें, खोए रहें। आज भी प्रभु का स्मरण होगा और प्रभु की भक्ति में लिपटे कुछ ऐसे गाने, ऐसे मनमोहक गीत जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे जो आपके मन को मोह लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति सागर। रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज सबसे शुरुआत जो होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति सागर है तो भाई प्रभु के नाम स्मरण के साथ शुरुआत होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले करते हैं नाम जाप और उसके बाद और बातें होंगी, प्रभु की भक्ति में डूबेंगे। सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर।

रेडियो प्रसारणी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ भक्ति सागर। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का सार समझा रहे थे, जब जीवन का सत्य समझा रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन से एक बहुत बढ़िया बात कही थी मुझे लगता है, और आज जब हम और आप आज के युग में हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को धर्म को समझाया। हम आज धर्म का मतलब जात पात से लगा लेते हैं, तुम हिंदू ये तुम्हारा धर्म, तुम मुस्लिम ये तुम्हारा धर्म, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म जो मनुष्य का है वो है युद्ध करना, जीवन के पथ पर अच्छाई और सच्चाई के लिए लड़ना ही सबसे परम धर्म भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया। और उन्होंने कहा कि ये युद्ध कभी कभी अपनों के खिलाफ भी हो सकता है। अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे अपनों पर शस्त्र चलाने के लिए। उन्होंने माधव से कहा कि ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं माधव इन पर कैसे अस्त्र उठाऊं, मैं कैसे इन पर बाण चलाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब जो तुम्हें अपने दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारे नहीं हैं, इन सब में मेरा ही अंश है, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और तुम्हें धर्म का साथ देना है। बस यही बात हमें भी याद रखनी है, कई बार जीवन का धर्म युद्ध अपनों के खिलाफ भी हो जाता है, लेकिन धर्म युद्ध लड़ना ही यही नियति है, और इसी नियति को भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए भक्ति सागर, सताक्षी आपके साथ है।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। भक्ति सागर के आनंदित कर देने वाले सफर में, मन मोह लेने वाले सफर में मैं सताक्षी एक बार पुनः आज आपके साथ हूँ और आशा करती हूँ कि आप ईश्वर की ओर कदम दर कदम पढ़ रहे होंगे। एक और गीत सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो ब्रिस्वानी।

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम इस नाम से आपने भी भगवान श्री राम को कई बार पुकारा होगा, कई बार उनका जिक्र किया जाता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा क्यों जाता है? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा का निर्वाह किया। जीवन की ही न जाने कितनी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। जब एक पुत्र बनकर पिता के कहे वचनों को निभाना था तो उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा और बिना किसी शिकायत के 14 वर्षों के वनवास के लिए पिता की आज्ञा मानकर निकल गए। वो आज्ञा जो उनके पिता ने दी ही नहीं थी, वो चाहते तो वो विद्रोह कर सकते थे, माँ केकई से लड़ सकते थे, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते थे, लेकिन वो मर्यादित रहते हुए चुपचाप मैया सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, 14 वर्षों तक भटकते रहे। जब एक पति की मर्यादा को निभाने की बारी आई तो भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। वो सीता को जमीन आसमान एक करके रावण के चुंगल से बचा कर लाए, और जब राष्ट्र की बात आई, जब राज्य की बात आई तो भी उन्होंने मर्यादा निभाई, और वो सीता जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करते थे उन्हें ही उन्होंने वापस वन में भेज दिया, उन्हें ही त्याग दिया। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और ये सब होने के बाद भी उन्होंने जीवन भर माँ सीता के अलावा किसी से प्रेम नहीं किया। तो ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और इसीलिए कहते हैं कि हर कोई राम तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर उनके कुछ आचरण हम अपने जीवन में उतार पाएं यही बहुत है। और उन्हीं आचरणों के नाम ये अगला गीत सुनिए और सुनते रहिए रेडियो पुला मस्ती। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ भक्ति सागर।

0: भक्ति का आनंदित कर देने वाला सफर भक्ति सागर। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो बुला मस्ती पर और इस सफर में आपके साथ सताक्षी है। हम जानते हैं कि भक्ति का सफर एक ऐसा सफर है जिसकी डगर आसान नहीं होती है। कई बार आपका मन विचलित होता है, कई बार आपको लगता है कि सांसारिक सुख ज्यादा अच्छे हैं, भक्ति की राह अत्यंत कठिन है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्त बनकर ईश्वर के करीब जाते हैं, आपको वही राह आसान लगने लगती है। एक और गीत के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो पूला मस्ती पर।
1: जय

कहते हैं माँ वैष्णो देवी भगवान श्री राम से प्रेम कर बैठी थी और उन्हें पाना चाहती थी पति रूप में। इस बात का प्रस्ताव माँ वैष्णो ने प्रभु श्री राम के आगे रखा भी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। लेकिन राम का जब अवतार हुआ तो राम ने अपने विवाह के पहले दिन ही माँ सीता से ये वादा किया था, ये वचन दिया था उन्हें कि उनके अलावा, उनकी ज़िंदगी में, माँ सीता के अलावा राम जी की ज़िंदगी में और कोई भी स्त्री नहीं आएगी। और इसीलिए जब माँ वैष्णो ने ये प्रस्ताव दिया भगवान श्री राम को, तो उन्होंने निवेदन के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं इस जन्म में तो पूरी तरह से सिर्फ सीता का राम हूँ, लेकिन जब मेरा कल्कि अवतार होगा उस युग में मेरा आपके साथ विवाह होगा। और तब से कहते हैं माँ वैष्णो गुफा में बैठी, वैष्णो देवी गुफा में बैठी प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रही हैं। जब कल्कि अवतार होगा तब वो इंतज़ार पूरा होगा और कल्कि रूप में भगवान श्री राम का विवाह माँ वैष्णो के साथ होगा। तो माँ वैष्णो की इसी तपस्या के नाम आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं मेरे साथ आराधना।

गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जी हाँ, भगवान भी अपने आप को गुरु से नीचे रखते हैं। जब गुरु और गोविंद में से चुनने की बारी आती है तो गुरु को गोविंद भी खुद से ऊपर कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु ही वो है जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। गुरु ही वो है जो किस तरह से आपको जीवन पथ पर सही रास्ता अपनाना है ये समझाता है। अगर गुरु नहीं हो तो आप कभी भी सदमार्ग पर नहीं चल सकते। अगर गुरु नहीं हो तो आपके पास कितनी भी बुद्धि हो आप भटक जाते हैं। इसीलिए तो एकलव्य ने अपना अंगूठा तक काट के अपने गुरु को दे दिया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो धनुर्विद्या में शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। अपने गुरु को बारंबार प्रणाम कीजिए, और अगर गुरु नहीं बनाया है तो बनाइए गुरु जरूर, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। आइए एक और गीत सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पे, और सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो ब्रिस्वानी पर।

तो भक्तजनों, ये था आज का भक्ति सागर, जिसमें हम और आप प्रभु की वंदना के साथ आज के सफर में डूबे रहे, इस सफर को जीते रहे और बार बार प्रभु प्रभु कहकर पुकारते रहे। उम्मीद करते हैं कि आज प्रभु ने आप सबकी बातों को जरूर सुना होगा। आप सबके दिलों की जो भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें जरूर महसूस किया होगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपको, आपके परिवार को हमेशा सुखी रखे, इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: कलियां चटक रही हैं, गुलचे महक रहे हैं, मसरूर गुलसिता से मेरा सलाम कहना। पेशे नजर हो ए दिल, पेशे नजर हो ए दिल, पेशे नजर हो ए दिल, मदीने की सरजमी जब पुल नूर आस्ता से मेरा सलाम कहना। पुल नूर आस्ता से मेरा सलाम कहना। मुस्लिम को है वसीला शाही अरब तुम्हारा, मुस्लिम को है वसीला शाही अरब तुम्हारा। मोमिन के बागबा से मेरा सलाम कहना, मोमिन के बागबा से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी वाला आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
1: अभी आप सुन रहे थे महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद से एक छोटी सी बयान। आपको याद रहे हर रविवार को इस समय 7 से लेकर 8 बजे तक हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजलदाद के साथ। लेकिन आज सुबह हजरत मौलाना फजलदाद के साथ हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकें। इस हालत में आपके लिए हम पेश कर रहे थे एक छोटी सी बयान मौलाना बशीर अहमद दीवान से, और अभी से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश कर रहेंगे कुछ चुने हुए हमद नात और कवाली। आपको याद रहे इस स्टेशन पर आप सुन सकते हैं इस्लामिक प्रोग्राम हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक, और हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 10 बजे तक, जिसमें हम पेश करते हैं महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद से बयान, जुमा बयान, और उसके बाद हम पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियाँ। फिलहाल आज सुबह हजरत मौलाना फजलदाद के साथ हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकें। इस हालत में आपके लिए पेश की है एक छोटी सी बयान हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ, और अब चलो अभी से लेकर 8 बजे तक कुछ चुने हुए हमद नात और कवाली। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन, और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

आपको याद रहे हर रविवार की सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए पेश करते हैं हमारे साथ इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजलदाद के साथ। लेकिन आज सुबह हजरत मौलाना फजलदाद के साथ हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके और उसके जगह पर आज सुबह आपके लिए हमने पेश किया छोटी सी बयान मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ। और अब चलो अभी से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ चुने हुए मजहबी कवाली हम्द और नात।

जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं रिलीजियस कवालीज, मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवाली हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

रेडियो 79 ऑन ब्रिस्बेन पर हमारे स्टूडियो में करीबन 20 मिनट बाकी है 8 बजने में। आपको याद दिला दूं कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूं, आज सुबह रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, इस हालत में हमने पेश किया आपके लिए प्रोग्राम का शुरुआत किया हजरत महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ छोटी सी बयान, और अब आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ चुने हुए मजहबी कव्वालियाँ जिसको हम पेश करते हैं अक्सर 9:30 से लेकर 10 बजे तक हर जुमे के दिन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। और तो चलो चुने हुए हमद नात और कव्वाली को जारी रखते हुए हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ चुने हुए मजहबी कव्वालियाँ 20 से लेकर 8 बजे तक।

रेडियो समेलन ऑन ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में करीबन 12 मिनट बाकी है 8 बजने में। हर रविवार को सांस से लेकर 8 बजे तक हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ, जिसका रिकॉर्डिंग आज सुबह हम नहीं कर सके। यह हालत में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ चुने हुए मजहबी कवाली, हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई ओल्ड विंटेज कवालीज। और उससे पहले आपने सुना एक छोटी सी बयान महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ। फिलहाल कवाली को जारी रखते हुए आपको बता दूं कि 8 बजे आप सुनेंगे एक और साप्ताहिक प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम वेद वाणी। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान।

जरा था किस कदर ख्याल नवासों का बरमला। असहाबे मोहम्मद ने मोहम्मद से ये पूछा के उल्फत ज्यादा रखते हो किस नूरे ऐन से। फरमाया मुस्तफा ने हसन और

जैसी कहोगे वैसी सुनोगे, दुनिया का दस्तूर यही है। मुझको भी इनकार नहीं है, तुमको अगर मंजूर यही है। बात शबाबे धार की मानो, होश में आओ है नादानो। दो सुन लेना तब दो कहना, दुख दोगे तो दुख भी सहना, वरना तुम खामोशी रहना।

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपके खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो 79 प्रिस्पी।

अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजहबी कवालियाँ, विंटेज कवालीज हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान। हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुनते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजलदाद के साथ, जिसका रिकॉर्डिंग आज सुबह हम नहीं कर सके। इस हालत में आपके लिए हमने पेश किया कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज कवालीज हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई। और उससे पहले आपने सुना एक छोटी सी बयान महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ। आपको याद रहे हर शुक्रवार को जुमे के दिन महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से चुने हुए बयान आपके लिए हम पेश करते हैं, जुमा बयान, और उसके बाद ओल्ड विंटेज कवालीज। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान। आगे चल के 10 से लेकर 12 बजे तक हमारा और आपका साथ जमा रहेगा एक बार फिर यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई आपका यात्रा कराएंगे यादों के साथ। आपको याद रहे 10 से लेकर 12 बजे तक आज सुबह रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर हमारा साप्ताहिक सेगमेंट संगीत की जानकार। एंड नाउ आई इनवाइट यू टू लिसन टू अनदर सेगमेंट ऑफ वेदवाणी, वेदवाणी कवरिंग रिलीजियस कल्चरल एंड फैमिली मैटर्स। वेदवाणी रिसर्च्ड, रिटन, प्रेजेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय श्रीमान नंद किशोर दास प्रभुजी।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में। कृपया इस नंद किशोर दास का प्रणाम स्वीकार करें। हमारे पिछले कार्यक्रम में हम देख रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी अर्थात समलिंगी कामुकता के विषय में वेद शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसी मति का परित्याग करने को कहते हैं, क्योंकि इसमें दुर्गति और अनर्थ के सिवाय और कोई अंतिम परिणाम हो ही नहीं सकता। इस जगत में कई अनुचित और हानिकारक संबंध होते हैं, और हमारे लिए कौन से संबंध उद्धारजनक है और कौन से विनाशकारक है, इसको पहले से ही भगवान ने स्थापित कर हमें वेद शास्त्रों के माध्यम से जानकारी दे दी है। कुछ कुछ निषेध या अवैध संबंध इस प्रकार है। एक स्त्री का दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, एक गुरु का शिष्य के साथ शारीरिक संबंध, एक माता का अपने बेटे के प्रति संभोग का संबंध, एक पिता का अपनी बेटी के प्रति संभोग का संबंध, एक भाई का अपनी बहन के प्रति संभोग का संबंध, एक पुरुष का एक पराई स्त्री के प्रति संभोग का संबंध, और उसी प्रकार एक स्त्री का एक पराये पुरुष के साथ अवैध संबंध। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंधों को भी एक अवैध संबंध कहा गया है। ऐसे अनुचित संबंध स्थापित करने से चेतना पर बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचती है। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमने ब्रह्मा का उदाहरण बताया था, जिन्हें अपनी बेटी के प्रति आकर्षण था और उनकी मति तो किसी के उपदेश से शुद्ध नहीं हो पाई। केवल भगवान के हंस अवतार ही उनकी मति को पलट सके। जो सभ्य पुरुष होते हैं वे कभी अनुचित संबंध स्थापित नहीं करते। सारे महाभारत में अर्जुन अत्यंत विख्यात है। जब अर्जुन को युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी। जब स्वर्ग लोक में उर्वशी नाम की अप्सरा ने अर्जुन को देखा तो वो उनकी ओर मोहित हो गई और उन्होंने अर्जुन के समक्ष शारीरिक संबंध का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उसका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और जब उन्हें पूछा गया कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं, तब अर्जुन ने उर्वशी को ये याद दिलाया कि पूर्व काल में उर्वशी अर्जुन के पूर्वज महाराज पुरुरव की पत्नी थी और आज भी वे वही उर्वशी है। इसी कारण उनके साथ अर्जुन का संबंध केवल एक माता का हो सकता है और कोई शारीरिक संबंध संभव है ही नहीं। अर्जुन का ये वचन सुनकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया था। महाभारत में एक दूसरा दृष्टांत भी मिलता है और वो भी अर्जुन के संबंधित। जिस समय पांच पांडव और द्रौपदी एक वर्ष का अज्ञातवास महाराज विराट के राज में बिता रहे थे, उस समय राजकुमारी उत्तरा महाराज विराट की सुपुत्री अर्जुन से नृत्य और संगीत की कला सीख रही थी। वो अर्जुन की शिष्या थी, परंतु उस राज में उस समय सब लोग अर्जुन को एक नपुंसक बृहन्नला के नाम से जानते थे। तो उर्वशी का वो शाप इस समय अर्जुन के लिए उपयोगी बनता है। उस अज्ञातवास की समाप्ति पर जब महाराज विराट को अर्जुन का सत्य पता चलता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि पांचों पांडव और द्रौपदी एक वर्ष तक उनके राज में आश्रय लिए हुए थे, तो वे बड़े ही प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपनी ही इच्छा से वे अर्जुन को अपनी सुपुत्री राजकुमारी उत्तरा का हाथ विवाह के लिए देना चाहते थे। परंतु उस समय अर्जुन ने उन्हें कहा कि ये कैसे हो सकता है, उत्तरा तो मेरी शिष्या है, मैं इसे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, परंतु हाँ मेरे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। और इस प्रकार उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो हम इन उदाहरणों से देख सकते हैं कि कैसे सभ्य पुरुष अनुचित संबंध में नहीं पड़ता है, विशेष करके जब वो संबंध शारीरिक संबंध में बदल सकता हो, तब शास्त्र हमें बहुत ही सतर्क रहने को कहते हैं। कभी काल कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जिनमें शारीरिक संबंध अनुचित लगते हुए भी अनुचित नहीं होते हैं। ये दृष्टांत भी महाभारत में ही मिलता है। महाराज शांतनु के सत्यवती के साथ दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद को राजसिंहासन सौंपा गया, परंतु एक गंधर्व के साथ युद्ध में
चित्रांगद मारा गया और उस समय उनके पास कोई संतान नहीं थी। उस समय विचित्रवीर्य बहुत ही छोटे थे, परंतु सत्यवती के आदेश के अनुसार छोटे विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, परंतु राज्य के संचालन के कारोबार भीष्म को सौंपा गया था जब तक कि विचित्रवीर्य बड़े ना हो जाए। परंतु उनके बड़े हो जाने के पश्चात भी उन्होंने रोग से पीड़ित होकर अपने प्राण गंवा दिए। उस समय उनके पास भी कोई संतान नहीं थी। जब कोई भी पीढ़ी बची नहीं वंश को आगे बढ़ाने के लिए और राज सिंहासन को संभालने के लिए, तब ऐसी अवस्था में सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासदेव को आदेश दिया कि वे अपने भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद के पत्नियों के गर्भ से संतान उत्पत्ति करे। ऐसा करने की अनुमति उसे विशेष परिस्थिति में दी गई थी। इसे कहते हैं देवरेना सुतोत्पत्ति, कि सुत अर्थात बच्चों की उत्पत्ति देवर के द्वारा। ऐसा केवल विशेष परिस्थिति में किया जाता था, अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए नहीं। और क्योंकि कलयुग में लोग अधिकतर कामातुर होते हैं, इसी कारण शास्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि देवर से बच्चों की प्राप्ति करनी कलयुग में निषेध है, इस युग में मना है। इसका दुरुपयोग करके लोग अधम बनकर नरक के निवासी बन सकते हैं। तो ऐसी कई वस्तुएं हैं जो पहले वैदिक संस्कृति में किए जाते थे, जो आज इस कलयुग में वर्जित है, अर्थात जिसे करना मना है। जब विवाह की बात आती है उसमें भी इसी प्रकार से है। वैदिक संस्कृति के अनुसार कई प्रकार के विवाह होते थे। वैदिक विधि के अनुसार तो सर्वोत्तम विधि ये है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाए। दहेज भी यथाशक्ति देते थे, परिवार को कर्जे में डुबोकर नहीं। पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था, तो क्या उनकी सुपुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था? ना, उनका भी अधिकार होता था। उनके अधिकार का भाग उन्हें उनके विवाह के समय मिलता था दहेज के रूप में। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का ये रूप प्रचलित है और शास्त्रों में तो इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कार्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना, या जिसे कन्या दान कहते हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, परंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि प्रचलित है और उस विवाह विधि को कहते हैं ब्रह्म या राजसिक विवाह। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह वर्जित है, जैसे पहले वैदिक समय में प्रेम द्वारा, जयमाला के द्वारा और अपहरण के द्वारा भी विवाह किए जाते थे, परंतु इस कलयुग में ये सब विवाह विवर्जित है, मना है। पहले के समय में क्षत्रिय लोग अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राज परिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा है कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी के साथ विवाह किया था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया था, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। तो प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है, क्योंकि भारत देश भी विदेशों पर आश्रित रहने लगा। उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में तो सभी लोग शूद्र ही है। कई ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और वैश्यों ने भी अपने परंपरा के कार्यों का परित्याग कर दिया और इसी कारण वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का भी कहना है कलौ शूद्र संभव, इस कली काल में सभी शूद्र के समान है। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा, जो कि पहले समय में पालन होता था। जब कभी भी महान गुणों के स्थान पर अवगुण लोगों में आने लगते हैं, तब वे अपने ऊंचे स्तर को खो बैठते हैं और समाज में भी उनका सम्मान घट जाता है।
जो लोगों के गुण अच्छे हो तो उनके आचरण भी अच्छे होंगे। जिन लोगों में अवगुण होते हैं ये गुण तो अवश्य ही उनके आचरण में दिखने लगेंगे। और जब किसी समाज के लोगों का गुण उनके आचरण विनाशकारक होते हैं तो ऐसे लोगों से निर्मित समाज जो है वो भी विनाश के मार्ग पर चलने लगते हैं। अब जो हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि अभी वर्तमान समय में ये लीगलाइज हो जाए कि विवाह के लिए कोई किसी स्त्री को किडनैप कर सकता है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अभी के समय में जो ऐसी छूट दी जाए लोगों को तो क्या कुछ नहीं होने लगेगा। इसी कारण जो कलयुग के मनुष्य को हानिकारक होगा इसे पहले से ही त्रिकालदर्शियों ने जानते हुए इस युग में वर्जित रखा है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि कई पुराणों में, कई वैदिक ग्रंथों में कलयुग के लिए विशेष रूप से ऐसे नियम दिए गए हैं जो दूसरे युगों में नहीं थे। जैसे हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेणा सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयत, कि कलयुग में ये पांच वस्तुएं विवर्जित है। एक अश्व या घोड़े की बलि चढ़ाना, एक गाय की हत्या या बलि चढ़ाना, संन्यास ग्रहण करना, अपने पूर्वजों को मांस अर्पण करना और अपने भाई की पत्नी या अपनी भाभी के गर्भ में बच्चे उत्पन्न करना, ये सब इस कलयुग में विवर्जित है। और कहा यह भी है कलौ शूद्र संभवहा, कि कलयुग में जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। और फिर स्कंद पुराण में अशुद्धहा शुद्र कल्पा ही ब्राह्मणहा कलि संभवहा, कि कलयुग में अवश्य ही ब्राह्मण शूद्र की तरह अपवित्र हो जाएंगे, अर्थात कलयुग में ब्राह्मण शूद्रों की तरह जन्म लेंगे। वराह पुराण में तो यहां तक कहा गया है राक्षसाः कलिम आश्रित्य जयन्ते ब्राह्म योनिषु। सुखदेव गोस्वामी भागवत पुराण में कहते हैं असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तमसावृतः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिनः। शास्त्रिक नियमों के उल्लंघन के कारण तथा वैदिक क्रिया कर्मों से न पवित्र होते हुए कलयुग में लोग राजसिक और तामसिक गुण से पूरी तरह से ढक जाएंगे। ततश्चानो दिनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्ष्यत्यायुर बलम स्मृति। तत्पश्चात हे राजन, धर्म सत्यता शुद्धता सहनशीलता दया जीवन की आयु शारीरिक बल तथा स्मृति या याद शक्ति दिन प्रतिदिन कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण घटते ही जाएंगे। वित्तम एव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में केवल धन को ही देखकर ऐसा माना जाएगा कि एक व्यक्ति ऊंचे घराने का है, उचित व्यवहार का है और उत्तम गुणों का है। न्याय और कानून केवल शक्ति के आधार पर ही नियुक्त किए जाएंगे। दाम्पत्य भिरुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चही रतिर विप्रत्वे सूत्रमेव ही। पुरुष और स्त्री केवल बाहरी आकर्षण से ही साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता धोखा देने पर आधारित होगी। शारीरिक संबंध या मैथुन में कोई कितना निपुण है उसी से नारित्वता तथा मर्द को परखा जाएगा और किसी को जनोई पहने देखकर उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा। लिंगम एवाश्रम ख्याताव अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। एक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को केवल बाहरी चिन्हों से परखा जाएगा और जब वो अपना आध्यात्मिक स्तर बदले उस समय भी बाहरी चिन्हों से ही उसे परखा जाएगा। एक व्यक्ति के नीति और व्यवहार पर प्रश्न उठाए जाएंगे जो वो ठीक प्रकार से कमा नहीं रहा हो, जो उसकी अच्छी आमदनी ना हो और जो अपने वचन से चपलता दर्शाए उसे एक पंडित माना जाएगा, उसे विद्वान माना जाएगा। अनाध्यते वा साधुत्वे बाहरी चिन्हों से ही उसे परखा जाएगा। एक व्यक्ति के नीति और व्यवहार पर प्रश्न उठाए जाएंगे जो वो ठीक प्रकार से कमा नहीं रहा हो,
जो उसकी अच्छी आमदनी ना हो और जो अपने वचन से चपलता दर्शाए उसे एक पंडित माना जाएगा, उसे विद्वान माना जाएगा। अनाध्यतेइवा साधुत्वे साधुत्वे दंभ ए

करेगा। विवाह केवल बातों से स्वीकार किए जाएंगे और केवल स्नान करने से ही वह अपने आप को आम जनता के समक्ष जाने के लिए योग्य समझेगा। दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्यम एव हि दाक्षम कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। धार्मिक पवित्र स्थलों को केवल दूरी पर स्थित जल माना जाएगा और अपनी सुंदरता बालों के सजावट पर निर्भर समझेंगे। अपने उदर या पेट को भरना जीवन का लक्ष्य माना जाएगा। जो बहुत अधिक बोलेगा या ऊंचे स्वर में बोलेगा उसे सत्य माना जाएगा और जो भली भांति अपने कुटुंब का पालन कर सकेगा उसे निपुण माना जाएगा, एक्सपर्ट माना जाएगा। और धर्म का पालन जो किया भी जाए तो केवल यश कीर्ति या अपने मान और सम्मान के लिए करेंगे। एवं प्रजाभिर दुष्टाभिर आकीर्णे क्षितिमंडले ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बली भविता नृपः। जैसे ही पृथ्वी पर इस प्रकार की भ्रष्ट आबादी बढ़ने लगेगी उनमें से जो भी सामाजिक दर्जा सबसे अधिक बल दर्शाए उसी को राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। दस्यु प्रायेषु राजसु अधिकांश राजागण चोर बन जाएंगे। प्रजा ही लुब्धैर राजन्यैर निर्घृणैर दस्यु धर्म भी आच्छिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। ऐसे लालची और दयाहीन राजनीतिक नेतागण लोगों की संपत्तियां और पत्नियों को भी चुरा लेंगे। उनमें और सामान्य चोर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और उनसे दूर होने के लिए नागरिक लोग वन और पर्वतों की ओर भाग जाएंगे। शाक मूलामीश शौद्र फल पुष्पास्ति भोजनः अनावृष्ट्या विनंक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़ित। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण और अत्यधिक कर या टैक्स के कारण लोग पत्तियां मूल दाने और फूल खाने लगेंगे और जब सूखा पड़ेगा तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। कलयुग के इस दृष्टांत को सुनने से हम ये जान सकते हैं कि इसी पृथ्वी के कई स्थानों में ये सब होना आरंभ हो चुका है। और जो हम कहे कि हम इसके विषय में क्या कर सकते हैं, कलयुग को रोकने की तो हमारे पास कोई शक्ति है ही नहीं। और ये बात सत्य है, जिस प्रकार से जब ठंड की ऋतु आती है तो हम ठंड के सीजन को आते हुए रोक नहीं सकते, परंतु अपने आप ठंड से सुरक्षित रहने के लिए हम कंबल, गर्म कपड़े इन सब चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इस कलयुग को आते हुए हम रोक नहीं सकते, परंतु अपने लिए हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि यह कलि का प्रभाव हम पर न पड़े अथवा सहन करने के योग्य हो। आज ये अनुचित संबंधों का विषय हम क्यों लेकर आए, क्योंकि जो हम सावधान न रहे तो हमारे संबंधों के माध्यम से हमें अपार कष्ट प्राप्त हो सकता है। शास्त्रिक ग्रंथ हमें सुख के मार्ग पर ले जाने के लिए है, ये हमारे हित के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र की विधि को न अपनाता है और जो जी में आए मन में आए वही करता है उसे न तो सिद्धि न ही सुख और न परम गति की प्राप्ति होती है। जो हम शास्त्रिक ग्रंथों के अनुसार जीवन जिए तो हम कीचड़ में भी सुखमय जीवन जीने के अधिकारी बन जाते हैं। हमारे संबंध सुधरेंगे और हम मन की शुद्धता और शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें केवल इस तुच्छ निजी जीवन के क्षणिक सुख के पीछे ही प्रयास नहीं करते रहना चाहिए। इसी कारण भागवत कहता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हिये को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजन, कलयुग दोषों से भरपूर है, परंतु इस युग में एक बहुत ही महान गुण है और वो ये है कि केवल भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने से एक व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकता है। इसी कारण आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हर एक धर्म में भगवान के नाम अलग प्रकार से पुकारे जाते हैं, परंतु इस कलयुग में यह रिकमेंड किया गया है कि हमें भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करना चाहिए। हमारे इस्कॉन संस्था

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। और अभी आपने सुना वेदवाणी, उससे पहले इस्लामिक प्रोग्राम, और अब यहाँ से एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों। एक घंटा मैं लेकर आया हूँ प्रोग्राम, और उसके बाद में संगीत की झनकार के साथ आप हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा मौसम क्या कह रहा है। आज रविवार 27th, जी हाँ, आज के लिए कहा गया है 14 and 27 रहेगा, 30% चांस ऑफ कुछ रेन। और कल के लिए 17 and 25 रहेगा दोस्तों, और 70% चांस कहा गया है, थोड़ा हाई चांसेस है कल। और मंगलवार के लिए 16 and 23 रहेगा दोस्तों, हाँ 16 और 23, 40% चांस ऑफ रेन। वेंसडे को 13 and 25, 20% चांस ऑफ रेन। और थर्सडे को 13 and 26 रहेगा, और 5% चांस ऑफ रेन। फ्राइडे को 14 and 27 रहेगा, 30% चांस ऑफ रेन। अगले शनिवार के लिए कहा गया है कि 30% चांस ऑफ रेन, 15 and 28। और फिर अगले संडे को कहा गया है 90% चांस ऑफ रेन, 18 and 27 रहेगा। तो इस तरह से लग रहा है कि बारिश कुछ होने की संभावना है दोस्तों, तो देखते हैं। वैसे तो कहा गया है कि बहुत ड्राई समर रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन क्या होता है देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये तो सिर्फ प्रेडिक्शन है। तो चले कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी के लिए साधना सरगम और कुमार सानू से आप सुनेंगे, आपके करीब हम रहते हैं।

बजकर 9 मिनट हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। अगला जो गीत है दोस्तों, इसका एहसास कुछ ऐसा है कि आओ हम दोनों मिलकर, क्या बता सकते हैं कौन सा गीत है, आओ हम दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत की एक खूबसूरत दुनिया बनाएं, अपने सपने सजाएं और जिंदगी का सफर साथ साथ तय करें। बताइए कौन सा गीत है, नहीं मालूम तो चलो सुनते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा गीत है।

0: जो सिर्फ रास्ते में नहीं बल्कि जिंदगी के सफर में आपका जो साथी बने, ठीक है, हम सफर। तो चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ है राजू अंकल और उनसे कुछ बातें करेंगे। राजू आपका नमस्कार। राव जी माफ करना, क्या हुआ? हाँ राव जी।
1: हाँ जी।
0: हाँ हाँ हाँ कहिए।
1: अच्छा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूँ लाइन पर।
0: जी हाँ, आप एयर पे हो।
1: अच्छा अच्छा, आज मेरे पास एक छोटी सी विषय है
0: जी,
1: वो है जीवन की सीख।
0: जी,
1: जीवन में हम कैसे रहते हैं और क्या क्या परेशान आती है और निराशा भी आती है, और कभी हार मिलेगी तो कभी जीत मिलेगी।
0: सही बात।
1: ये जीवन की सीख, वो है जीवन की सीख।
0: जी,
1: जीवन में हम कैसे रहते हैं और क्या क्या परेशान आती है और निराशा भी आती है, और कभी हार मिलेगी तो कभी जीत मिलेगी।
0: सही बात।
1: ये जीवन की सीख है।
0: जी जी जी।

0: जी जी सही बात।
1: हार जाने पर क्यों दुखी होना, कभी नहीं दुखी होना चाहिए। जीत भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, और निराश होकर क्यों रोना। जीवन के और भी पन्ने खुलना बाकी है, अभी लंबा समय हम लोगों के पास है। कुछ पन्नों में हार मिलेगी तो पन्नों में कुछ जीत मिलेगी। हार के भय से जीवन जीना मत छोड़ना। जीत को पाने के लिए तुम आगे बढ़ना, और जीवन में कई परीक्षाएं आएगी, उनसे डर कर पीछे मत हटना। यदि हार मिले तो निराशा और निराश मत होना, और जीवन में आगे बढ़ते जाना, नए पन्नों को खोलते रहना। हमेशा आपके लिए नया जीवन हम मिलता है। हम जब सो करके जागते हैं तो हमको एक नया जीवन मिलता है। जीवन का यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत होती है।
0: बहुत बहुत बहुत सही कहा आपने, जीवन की तो रीत है, और हमेशा तो हम जीत नहीं सकते ना दोस्त राव जी। हारना भी है, हारना भी है, लेकिन हारेंगे नहीं, उठकर फिर चलेंगे, जैसे आप कह रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है
0: जी। हाँ, बैठ जाएंगे तो गए काम से फिर।
1: हाँ जी, और फिर जब रेडियो ब्रिज पानी साथ में है तो हमको डरने की क्या बात है।
0: हम आपके साथ साथ हैं।
1: हाँ जी
0: राव जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप इतना अच्छा संदेशा लेकर आए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
1: थैंक यू
0: जी। हाँ, फिर मिलते हैं, ठीक है
1: जी।
0: ओके, तो दोस्तों राव जी के साथ अभी हम कुछ बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर, और राव जी तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज लेकर आते हैं हमारे लिए। तो चलिए, अगला जो गीत है, हजरतें हैं बहुत, आतिश का गाना है, कुमार सानू, और गाए हैं तो सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवाली आप सुन रहे हैं और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। अगर अभी आप अभी ज्वाइन किए हैं और जितने भी लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, चलो आप सभी का बहुत बहुत तेज दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक फैक्ट बता दूं आपको। 1902 में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना जिसने महलों को फेडरल इलेक्शन में वोट देने और पार्लियामेंट के लिए खड़े होने के लिए दोनों अधिकार दिए। ठीक है, वी वर द फर्स्ट कंट्री। लेकिन उस समय ज्यादातर जो ओरिजिनल और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर्स जो आइलैंड लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स से वंचित रखा गया था। उन्हें पूरे जो फेडरल वोटिंग राइट्स 1962 में मिले। तो देखिए एक हिस्ट्री है आपके लिए दोस्तों, और तो मुझे भी नहीं मालूम था कि फर्स्ट पीपल वेयर ऑस्ट्रेलियन लेडीज। चलिए बहुत प्यारा गीत है तेरा फितूर अरिजीत सिंह।

और देखिए, जो इक्वलिटी के बात हम कर रहे हैं, वुमेन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी का एक बड़ा चैप्टर साउथ ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था दोस्तों, जिसमें चार महिलाएं कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया के फेडरल इलेक्शन में पहली बार चार महिलाओं विडा गोल्डस्टीन, नेली मार्टेल, मैरी मोआ बेंटली और सलीना एंडरसन, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कोई जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जो दूसरी औरतें हैं वुमेन के लिए रास्ता खोल दिया। तो चलो, इवन दो दे कॉन्टेस्टेड, दे डिडंट गेट दैट सीट इन द फर्स्ट वन, बट जैसे कि और औरतों के लिए ये रास्ता खोला गया था। जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म जन्नत का गीत आपने सुना प्रीतम के संगीत पर, और केके ने इस गीत को गाए और गाया था। जी हाँ, और देखिए हम जो प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया से आप सुन रहे हैं, लगभग 30 साल हो गया इस प्रोग्राम का दोस्तों, समय कहाँ गया पता ही नहीं चला, खैर चलो। और हमारे यहाँ पर इस कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता इलेक्शन के समय, या कहते हैं कि इलेक्शन को स्टील किया गया, ये सब बवाल यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। यहाँ का डेमोक्रेसी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है मेरे ख्याल से, और आई थिंक द डिफरेंस इज बिकॉज हमारे ऑस्ट्रेलिया में इट्स कंपल्सरी, वोटिंग इज कंपल्सरी। इसका एक फायदा क्या है दोस्तों कि वोट जब कंपल्सरी ना हो तो जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये लोग इंटाइस करते हैं लोग को वोट देने के लिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब नहीं होता है दोस्तों, तो हम वोट देते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम वोट देते हैं ये ना जाकर वोट दे, अभी तो कोई वोटिंग वोटिंग तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन जब हो तो ये मत सोचकर वोट दे कि चलो हमें देना है या बस कास्ट कर देते हैं, नहीं ये बात नहीं है। आपका एक अधिकार है, आपको मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप जब भी वोट करें, समझ कर थोड़ा उसके बारे में स्टडी कर ले, और जिम्मेदारी के साथ आप अपने वोट को दें, ठीक है? खूब अच्छी तरह से सोच समझ कर कौन क्या कह रहा है। वैसे जब मैं वोट देता हूं तो मैं पार्टी लाइन नहीं हूं, मैं पार्टी लाइन नहीं फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन जाकर वहां पर अच्छा काम कर सकेगा, देन आई वोट दैट वे, दैट्स माय वे, ठीक है? तो एक थोड़ा सा सोचा आपसे डिस्कस कर लूं, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अमेरिका में मिड टर्म है ना, उदित नारायण और महालक्ष्मी से आप सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा गीत है, ए अजनबी दिल से। जी हाँ, फिल्म दिल से है, यानी मेरे दिल से भी है। चलो सुनते हैं इस गीत को, यानी दिल से दिल तक।

चलो मैं रेडियो बिजवानी से आवाज़ दे रहा हूँ आप सभी को, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्या कभी आपने सोचा कि जो $50 नोट पर भी किसी का तस्वीर है, कौन है? जी हाँ, एडिथ कवन का जो हिस्टोरिक अचीवमेंट है 1921 में, एडिथ कवन किसी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड होने वाली पहली वुमन बनी। जी हाँ, उन्हीं की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के $50 नोट पर है। चलो एक जानकारी, कितने लोग को मालूम था बताइए, आप सच बताइए, मुझे नहीं मालूम था। जी हाँ, चलिए अगला जो गीत है शबनम का गाना है, और भूपेंद्र सिंह से आप सुनेंगे दोस्तों, आहार से कोई आए, तो क्या लगता है?

और इस समय 10 मिनट रह गए हैं दोस्तों, 10 बजने में, 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ठीक है। कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है। दोस्तों, आर डी बर्मन की खूबसूरत धुन और मजरू सुल्तानपुरी का जो दिलचस्प आवाज़ है, अल्फाज, और किशोर कुमार का सोलफुल आवाज़ में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इतना भी कह दूँ कि इस गीत को क्या बोलते हैं, सुल्ताना जी, बेगम प्रवीण सुल्ताना, उनका जो वर्जन है उसके लिए 1982, जी हाँ, उसको जो क्या बोलते हैं फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था जी। क्या बात है। चलिए, बहुत प्यारा गाना है और सुनते हैं इस गीत को। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते, फिल्म खुदरत का है, किशोर कुमार वर्जन।

जी हाँ दोस्तों, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। बड़ा प्यारा सा गीत अभी आपने सुना दोस्तों। और अब यहाँ से मेरा जाने का वक्त हुआ है। कल सुबह मैं मिलूँगा अमिता के साथ। लेकिन चलते चलते चलो एक ऐसा गीत देखिए दोस्तों। एक ज़माना था जब हम प्यार जिसे भी इमोजी ये सब करके भेज देते हैं ना, लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं था दोस्तों। बस खत और फूल से बयान होता था आपका प्यार, है कि नहीं। बहुत लोग ऐसे सुनने में आया है, मैं तो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ दोस्तों, कि कभी कभी ऐसे सुनने में आया है कि लेटा में कुछ डिओड्रेंट लोग डाल देते थे या कुछ फूल उसमें रख कर भेजते थे। क्या आपने इसे कभी किया होगा? किया तो बताइए मंडे के प्रोग्राम में आकर, ठीक है? प्लीज लेट अस नो। तो चले, एक बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों और आपको पता चल गया होगा कौन सा गीत है। यस, इसी गीत के साथ हम यहाँ से हम निकल रहे हैं और संगीत के जानकार टीम आपके साथ हो जाएंगे। कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड। नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: ब्रिस्बन की पहली पसंद 1701 ब्रिस्बानी AM।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
1: रेडियो 71 ब्रिस्बन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

A very good morning to you all and welcome once again to Sangeet Ki Jhankar on the station 79 Brisbane. Your host Feroz Khan wishing you all a very pleasant Sunday morning. This beautiful spring here in Brisbane. Aap sab sunne walon ko Feroz Khan ka namaste, adab, assalamu alaikum, saasikar. Abhi se lekar 12:30 baje tak ek baar phir आपका दिल चाह कार्यक्रम संगीत की झनकार स्टेशन 79 ब्रिस्बेन पर. हम आशा करते हैं आज का दिन स्पेशल डे ब्यूटीफुल स्प्रिंग हियर इन ब्रिस्बेन. आपका आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो. और हर सप्ते की तरह एक बार फिर संगीत की झनकार इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं. हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s. आपके साथ यादों के सफर और मौसम बहार की अमानत ब्रिस्बेन में. फूलों की महक और रंगत क्यों बढ़ जाती है तन्हाई एहसास के, क्यों ले आती है चुपके से यादों के पल. मेरी और तुम्हारी यादें कुछ मौत